लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और 6 पीएम तक हमारे साथ रहेगा. इट्स ए लवली वेदर आउट देयर. जितने भी लोग अपना जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, 30th मई आज है और बहुत ही जल्दी मई महीना भी ख़त्म होने को आया है और फिर जून को हम वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है. मिड ऑफ द ईयर आ जाएगा एंड फिर ऐसे ही बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आ जाएंगे जहाँ पर फेस्टिविटीज़ इतने सारे हो जाएंगे और पूरा टाइम भी बदल जाएगा. फिर दिन भी और भी लंबी होने लगेगी. डेलाइट सेविंग आगे चलकर शुरू हो जाएगा एंड द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर विल रिटर्न. लेकिन फिलहाल विंटर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं. कुछ टिप्स भी मैं लेकर आया हूँ कि कैसे विंटर के दौरान आप अपने आप को वार्म और सुरक्षित रख सकते हैं और सर्दी और जुकाम से भी बच पाएंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
2: Yeah. Radio Pop.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Beating pump prices is easy when you take a bus. And with 45 Auckland Transport bus routes that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, chances are there's one going your way. Check the AT Journey Planner.
2: Big range, bigger deals. The large appliances expo is on now at Miteton Mega Westgate and Henderson. Kitchen se lekar laundry tak. Find the brands you love at prices you love even more. Jaldi kijiye. Ends June 1st. Only at Miteton Mega Westgate and Henderson.
3: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
4: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
3: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
4: Mashallah, bahut acha, very nice.
5: Looking for weekend plans? IKEA family members get 10% off furniture for 4 days only. Bring your home ideas to life. Ends 1st of June. T's and C's apply. Search IKEA furniture offer today.
6: IKEA.
7: The Specsavers Specstravaganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends May 30. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
8: And then Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
9: Achha?
8: Batao, toada focus focus, saada kuch nahi.
9: Shh, Mrs. Singh.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: द बीट ऑफ बॉलीवुड.
13: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: रेडियो पब. यू आर लिसनिंग टू क्रिश.
14: लेट्स गो.
15: You're listening to number one, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और रेडियो पब आपके लिए जारी है. हमारा जो सवाल है बहुत ही सिंपल है, विच सुपर रग्बी टीम इज विनिंग द टाइटल दिस ईयर. आपका प्रिडिक्शन क्या है, बोल्ड प्रिडिक्शन आप हमारे पास भेज सकते हैं 5599 पर. याद रहे आज खेल होने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया आज ब्रम्बीज और मोआना पैसिफिका का खेल होगा एट 4:35 PM, चीफ्स और ब्लूज का 7:05 PM और फोर्स और वराटास का 9:35 PM होगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. अगले घंटे पर भी बहुत बातें करेंगे आपके साथ और बहुत कुछ हम लेकर आए हैं, बस आपको हमारा साथ देते रहना है. गुड आफ्टरनून एवरीवन.

0: Radio Pub. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक एवरीवन. रेडियो पब में आपका स्वागत करता हूं. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, स्वागत है आपका. इस्तकबाल है आपका. आज 30th मई है और बहुत ही तेज़ी से ये महीना भी ख़त्म होने को आया है. जून के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं. और जितने भी हमारे लिसनर्स शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं या कुछ काम काज निपटा रहे हैं घर पर, या फैमिलीज़ के साथ अब बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं या लंच की तैयारी चल रही है, आपका स्वागत है. क्योंकि यहाँ से हॉट एंड हिट म्यूज़िक आप तक हम पहुँचाते रहेंगे. आप इन्जॉय करते रहो बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जो हम पर हमले कर आते हैं. और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और गाने आपको सुनाते हैं और कुछ बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं बहुत ही जल्दी शेयर करने जा रहा हूँ इसी घंटे पर. इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो. वेलकम टू द शो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन.
2: Do

बॉलीवुड न्यूज तो आप तक हम लेकर आते हैं और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देते हैं, बॉलीवुड फैंस जो आप होते हैं, आपको जानना है कि आपके फेवरेट सितारे क्या कर रहे हैं उधर ग्लिट्स एंड ग्लैमर दुनिया में। तो कंट्रोवर्सी ऑफ रणवीर सिंह्स डॉन 3 डिस्प्यूट ये एस्केलेट हो चुका है, ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी बन चुका था रणवीर सिंह और फिल्म डॉन 3 को लेकर। इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपको बस हमें सुनते रहना है। एनजेड म्यूजिक मंथ में मंथ जो है एनजेड म्यूजिक मंथ है, तो इस पर भी कुछ बातें करेंगे, साथ ही में द ग्रेट कॉमेडी नाइट पर भी बातें करेंगे इसी शिफ्ट में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Streaming on Rover.
1: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
2: Whoa!
3: Whoa!
4: Whoa!
3: Whoa!
1: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
4: whoa
1: into a
5: whoa.
1: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search QuakeSafe Your Place to learn more.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर.
10: Big barrel, big range, bigger deals this King's Birthday. Ophir Central Otago Pinot Noir, $11.99. Calvé Sparkling Brut or Rosé Brut, $16.99. And Nautilus Marlborough Cuvée Brut NV or Whispering Angel Rosé NZ, $36.99.
11: Big barrel, big barrel, you know, come to your store.
12: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
13: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
12: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
13: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
12: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
13: 100% authentic and pure as mother's love.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। जितने भी हमारे लवली लिसनर्स बॉलीवुड के फैंस हैं, बॉलीवुड म्यूजिक तो आप सुनते हैं लेकिन आई एम श्योर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो कंट्रोवर्सी रणवीर सिंह के डॉन 3 फिल्म को लेकर एस्केलेट हो चुका है और ये डोमिनेट कर रहा है बॉलीवुड हेडलाइंस। और इंडस्ट्री बॉडी फॉइस FYICE ने एक्शन लिया है आफ्टर डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि फाइनेंशियल लॉसेज और प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं जिससे जो मेजर कंसर्न्स रहे हैं, और सेवरल एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने पब्लिकली इस विषय पर कमेंट दिया है, प्रतिक्रियाएं दिया है, वो क्या सोचते हैं इस पर टिप्पणी किया है। और डिस्प्यूट ने एक वाइडर डिस्कशन को शुरू किया है ऑनलाइन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ ही देर में सलमान खान स्टेप्स इन एज मीडिएटर, ये जानकारी भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Looking for weekend plans? IKEA family members get 10% off furniture for 4 days only. Bring your home ideas to life. Ends 1st of June. T's and C's apply. Search IKEA furniture offer today.
2: IKEA.
3: White Dwarf free range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai. Yeah.
5: Radio Pub. रेडियो पब जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। फुटबॉल की खबरें मैं भी लेकर आया हूँ आपके लिए। टिम पेन हैज़ बिकम एन अनएक्सपेक्टेड सोशल मीडिया सेंसेशन अहेड ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप, जब एक अर्जेंटाइन इन्फ्लुएंसर ने हाईलाइट किया हिम एज ए लीस्ट नोन वर्ल्ड कप प्लेयर, और इसका इंस्टाग्राम एक्सप्लोडेड फ्रॉम फीवर देन 5,000 फॉलोअर्स टू मोर देन 2 मिलियन इन जस्ट अ फ्यू डेज। दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट फॉर हिम। और ये वायरल फेनोमेनन जो हुआ है, ग्लोबल मीडिया अटेंशन इसको दिया है विथ कवरेज फ्रॉम मेजर आउटलेट्स, जिसमें ESPN, BBC, द एथलेटिक एंड द गार्डियन ने इनको पब्लिश किया है। और इन्होंने कहा है कि द अटेंशन फील्स अ बिट स्ट्रेंज, क्योंकि इनको ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे पहले, लेकिन ये पॉजिटिव सपोर्ट को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये पॉपुलैरिटी इज ऑल्सो शाइनिंग ए स्पॉटलाइट ऑन न्यूजीलैंड मेंस नेशनल फुटबॉल टीम, जबकि वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर देयर फ्रेंडलीज अगेंस्ट हाइती नेशनल फुटबॉल टीम और इंग्लैंड नेशनल फुटबॉल टीम बिफोर देयर वर्ल्ड कप ओपनर अगेंस्ट ईरान नेशनल फुटबॉल टीम ऑन June 15th। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: रेडियो पब आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. 6 तक हमारा साथ रहेगा, लेकिन ऑन दिस आवर आपका स्वागत है. वेलकम बैक एवरीवन. न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स आपने सुन लिया है और अभी एंटरटेनमेंट शुरू करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर आया हूँ, प्यारे गाने. और लंच टाइम हो चुका है या लंच आप कर रहे हैं, लेट लंच अभी हो रहा है, या बाहर अगर आप है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, रेडियो पर ट्रैवलिंग करते हुए आप हमें कार में सुन रहे हैं, स्वागत है आपका. ऑनलाइन लिसनर्स को बहुत ही जल्दी याद करेंगे आज रेडियो पब में. मैं क्रिश आपके साथ दूंगा टिल 6 PM. बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स तो होगा ही, बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरें, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड जानकारी, साइंस रिलेटेड जानकारी भी आपके लिए हम लेकर आए हैं. सुनते रहो हम.

रेडियो पब जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुपर रग्बी रग्बी पैसिफिक की बातें किया जाए तो क्लार्क लैडलो बहुत सरप्राइज्ड है बाय रिपोर्ट सजेस्टिंग कि विंगा फेही फाइनांगोनोफो अब न्यूजीलैंड में खेलेंगे आफ्टर प्रीवियसली साइनिंग विद इंग्लिश क्लब न्यूकासल रेड बुल्स और फेही हैड बीन एक्सपेक्टेड टू लीव द हरिकन्स एट द एंड ऑफ द सीजन ऑन अ टू ईयर ओवरसीज डील रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि न्यूजीलैंड रग्बी मे हैव इंटरवीन्ड पोटेंशियली ओपनिंग द डोर for him to stay in New Zealand aur Laidlaw ne kaha he had not been informed of any change aur ye discussion se wo unaware the around Fehi remaining ye jo 23 year old player hai Fehi he has been one of super rugby pacific standout performer ये सीजन में और इज़ कंसिडर्ड ए मेजर टैलेंट फॉर न्यूजीलैंड रग्बीज़ फ्यूचर तो ये इस न्यूजीलैंड के लिए खेलेंगे ये रिपोर्ट आई है सामने मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा टिल 6 PM और भी प्यारे गाने आपको सुनाएंगे बहुत ही जल्दी

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: The Specsavers Specstrave Aganza store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends May 30. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
5: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 1205 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड.
9: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
10: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
10: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
9: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
12: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. Four massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.

0: Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हमारे साथ होंगे. कुछ ही देर में मैं आपको दी ग्रेट कॉमेडी नाइट के बारे में जानकारी दूंगा. ये एक बहुत ही अमेजिंग सा शो आने जा रहा है जिसको कहा गया है कि ओकलैंड यू मस्ट गेट रेडी टू लाफ अंटिल इट हर्ट्स. और ऐसा ही कुछ होगा कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर के साथ में, जिस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.

रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है फॉर द मंथ ऑफ मई कुछ दिन तक और, मतलब दो दिन तक और ये चलेगा। बैक योर बैकयार्ड बीट्स में इस पर भी बहुत ही जल्दी बातें करेंगे। कौन से आर्टिस्ट को आपने सुना और आप वोटिंग भी कर सकते हैं, आपके वोट्स पर टॉप थ्री डिसाइड होंगे रोवा ऐप पर आने के लिए। गिफ्ट हैम्पर भी इनको दिया जाएगा, तो बहुत ही जल्दी कुछ आर्टिस्ट के बारे में बातें करेंगे। रेडियो पब सुनते रहो, कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं। और हमारे जो लवली लिसनर्स इंतज़ार कर रहे हैं बॉलीवुड न्यूज़ का, वो भी बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।

0: वेट बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: People of New Zealand, Briscoe's $60 million King's Birthday Sale is on. With $60 million of stock reduced across all Manchester, electrical and the entire store. Shop Briscoe's $60 million King's Birthday Sale on now. See online for T's and C's.
2: Pop into New World North Island for great value every day. Get Proper Crisps, chips, select sizes $3.99 each, or Vita So UHT unsweetened almond coconut or oat milk 1 litre, $2.89 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
4: Bollywood ka asli blockbuster.
5: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
4: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
5: Yo.
4: Big Radio Pub. Yeah. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
6: रेडियो पब इट इज़, वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर इन रेडियो पब, और ये चलता रहेगा आपके लिए 6 PM तक। मिडवे हम पहुंच चुके हैं और बाकी का जो आधा सफ़र रह गया है इसमें भी आप हमारा साथ दें। बहुत ही ग्रेटफुल हूं मैं कि आपका साथ हमें मिल रहा है। आज सैटरडे है, 30th May है, खुशनुमा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। आई एम श्योर हर कोई एंजॉय कर रहा होगा, आउट एंड अबाउट आप होंगे, तो इस घंटे पर भी आपको हमारा साथ देना है। कुछ बैक टू बैक सॉन्ग्स पहले मैं आपको सुनाता हूँ और फिर बातें करेंगे इस घंटे पर। कुछ बॉलीवुड न्यूज़ लेकर आए हैं, साथ ही में साइंस रिलेटेड खबरें भी लेकर आए हैं। साइंटिस्ट ने एक ग्लोबल ट्रेजर मैप क्रिएट किया है पॉइंटिंग टू हिडन रेयर अर्थ डिपॉजिट्स, इस पर जानकारी। साथ ही में सलमान खान स्टेप्स इन एज मीडिएटर, ये भी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। एनजेड म्यूजिक मंथ पर भी बातें होगी जैसे हमें समय मिलता है आपके साथ। वेलकम बैक एवरीवन, गुड आफ्टरनून।

ये लिस्टिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. सलमान खान एक मीडिएटर के तौर पर इंटरवीन हुए. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट्स इन्होंने मीडिएट किया टेंशन्स बिटवीन रणवीर सिंह और फरहान अख्तर. यह डिसएग्रीमेंट जो हुआ था इज कनेक्टेड टू ट्रबल्ड डेवलपमेंट ऑफ डॉन 3. सलमान खान ने ऐसा कहा गया है कि सलमान खान ने दोनों पार्टीज को privately contact kiya to reduce friction or neither principal party has publicly detailed the disagreement or ye move highlight karta hai ki Salman Khan ka kitna bada influence Hindi film industry mein hai. Main Krish aapke saath de raha hu aur bhi Bollywood khabrein aap

आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है, मई महीना भर ये चलता आया है और दो दिन तक और चलेगा। बैक योर बैकयार्ड बीट्स, आप भी अपने फेवरेट सिंगर्स को वोट कर पाएंगे 5599 पर एमएम लिख करके, उनका नाम लिख करके भेजे। टॉप थ्री फाइनलिस्ट को आपके वोट्स के आधार पर चुना जाएगा। आपने मंडे को नील पटेल को सुना, ही इज़ बिन पार्ट ऑफ म्यूजिक एनजेड म्यूजिक मंथ सिंस फर्स्ट ईयर। और अभिषी जैन को आपने सुना, खोईसी इनका एक ओरिजिनल हिंदी कंपोजिशन रहा है, साथ ही में लाइज। और इसके अलावा आर्यन भाटिया को आपने सुना और उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट पर भी उनको आपने देखा होगा। भास्कर को आपने सुना और द बेनाम्स इनके भी गाने आपने सुने हैं, जिसमें आयुष केतन अंकित मन्नू सिंह ये टीम ने मिलकर बेनाम्स का ग्रुप बनाया है और इन्होंने ये गाना पेश किया है, तो इनको आप वोट कर पाएंगे। एनजेड म्यूजिक मंथ में हमारे लोकल आर्टिस्ट को हम सैल्यूट करते हैं फॉर द इनक्रेडिबल टैलेंट जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट बन चुका था पूरा महीना भर, एंड आई एम श्योर आगे चलकर भी बनता रहेगा। क्रिश का साथ है।

रेडियो पब जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ डिकोडिंग द गेम। ये सेगमेंट भी लेकर आते हैं जिसमें एक खेल को लेकर उनके फाइनल डिटेल्स के बारे में बताते हैं, डिकोड करते हैं। आज बातें करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। ये एक ऐसा गेम है जो दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, जहाँ पर टू टीम्स हिट अ बॉल ओवर ए नेट और दे ट्राई टू मेक इट लैंड ऑन द अदर साइड। और ईच टीम बॉल को 3 times तक टच कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग इट बैक। और कहा गया है कि एक रैली टिपिकली एक सेट पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें द सर्व स्टार्ट्स प्ले, फिर रिसीविंग टीम पासेस टू अ सेटा, सेटा प्रिपेयर्स अ सेट, और फिर अटैकर स्पाइक्स द बॉल एंड द अपोजिंग टीम ट्राइज टू डिफेंड बाई ब्लॉकिंग और डिगिंग टू कीप द बॉल इन प्ले। ये कहा गया है इसके बारे में। तो आप भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं अबाउट डिकोडिंग अ गेम, स्पेशली अबाउट वॉलीबॉल के बारे में, आप क्या जानते हैं, आप हमारे पास 5599 पर भेज सकते हैं। क्रिश का साथ है, रेडियो पब जारी है आपके लिए।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

रेडियो पब जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। साइंटिस्ट ने एक ऐसा ग्लोबल ट्रेजर मैप को बनाया है जो हिडन रेयर अर्थ डिपॉजिट के बारे में बता सकता है। 26 मई को इसको पब्लिश किया गया है बाय ग्लोबल जियोलॉजी जियोलॉजिकल स्टडी। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने कंबाइन किया है थाउजेंड्स ऑफ रॉक सैम्पल्स विद सेस्मिक डाटा फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर और इन्होंने एक ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर रेयर अर्थ रिच वोल्केनिक रॉक्स कहाँ पर फॉर्म हुए थे ये सामने आया है। और ये एलिमेंट्स एसेंशियल है फॉर टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये जो रिजल्टिंग ट्रेजर मैप बना है इस कार्य से ये फ्यूचर एक्सप्लोरेशन को और भी एफिशिएंट बना सकता है। स्टडी का मानना है कि ये नेशंस को हेल्प करेगा सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो बहुत ही लाजवाब ये रिसर्च रहा है जो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। क्रिश के साथ है, रेडियो पॉप जारी है,

0: Yo.
1: Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: Good afternoon, everyone. Welcome back to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. It is Radio Pub for you right now. और चलता रहेगा till 6 p.m. Two more hours to go. And thank you so much. अभी तक आपने हमारा साथ दिया है. इस घंटे पर NZ Music Month के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है. लेकिन music continues. Bollywood's biggest hits आपके साथ हम शेयर करेंगे. कुछ sporting खबरें हमारे पास है. वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. साथ ही में Bollywood में अगर देखा जाए तो मनोज बाजपेयी ने इंडस्ट्री टेंशंस को लेकर कुछ बातें कही है. Responded to that. साथ ही में साइंस रिलेटेड खबरें. तो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एटम्स की एटम सडनली बैकवर्ड भी स्पिन करते हैं इन क्वांटम एक्सपेरिमेंट. इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. शायद जितने भी लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड है ये न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा टिल 6 PM. आपको भी हमारा साथ देना है रेडियो पब में. गुड आफ्टरनून एवरीवन.

रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ सामाजिक सूचनाएं भी आपको हम सुना दें। 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा रखा गया है, जहां पर ऑर्गेनाइजर्स आ श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन ये लेकर आ रहे हैं पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा को, और महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 नॉर्थ न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस आप जा पाएंगे, जहाँ पर यहाँ पर प्रसारण होगा। यहाँ पर आप जाकर 5th to 11th June लाइव जो प्रसारण होगा ये भी आप सुन पाएंगे। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ और भी सामाजिक सूचनाएं हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी इस पर बातें करेंगे।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
2: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
3: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
2: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स, हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
3: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग, स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
2: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
5: व्हाट्स द ओकेजन, लेट अस नो, कम ऑन इनटू द बोटलो।
6: Smirnoff Vodka, Gordon's Gin 1 litre, or 700ml Jack Daniels and Jose Cuervo ranges, any two for $95. King's Birthday at the Bottle-O.
7: This King's Birthday weekend, save up to 70% off at Bargain Blinds and Curtains. Sleep like royalty in elegant chairs or prep for winter with thermal-lined curtains. Shop the royal sale at bargainblinds.co.nz now.
8: Beating pump prices is easy when you take a bus, and you won't even have to wait long. There are 45 bus routes around Auckland that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, and a whole bunch that keep running till midnight with reduced frequency, so you can spend your money on a night out instead of just getting there. Chances are, there's a frequent or late night bus that's going your way. Check the AT Journey Planner, then just turn up and go.
9: Danny didn't think he needed a DVS system.
10: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
9: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
10: Nah, only one room. It was just too noisy.
9: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

रेडियो कुछ और सामाजिक सूचनाओं के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। श्री दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामकृष्ण मंदिर 25 ओनस्लो एवेन्यू मनुकाव की ओर से ये सूचना है कि यहां पर 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होगा 13 जून को। 13 जून आपको यहां पर पहुंच जाना है। सभी धर्म प्रेमियों का सादर आमंत्रण है। यहां पर 7 AM टू 8 AM स्थापना पूजा होगा, 8 AM टू 6:30 PM चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडलीज और हवन और आरती शांति पाठ भी यहां पर होने जा रहा है। और भी जानकारी के लिए आप 0209-1219 पर कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। कुछ और सामाजिक सूचनाएं कुछ ही देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम
1: रेडियो पब जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ओकलैंड मराठी एसोसिएशन की ओर से ये प्रस्तुत है आज आनंद मिलावा, ये 2026 टीआरडब्ल्यू पेनिनसुला कम्युनिटी हॉल में ये होने जा रहा है। आज होगा इनफैक्ट 5 PM ऑनवर्ड्स आप यहाँ पर जा सकते हैं और ये सभी के लिए यहाँ पर जो आनंद मिलावा है 30 मई को ओपन एंड फ्री इवेंट है फॉर एवरीवन फीचरिंग फूड फन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं 5 PM ऑनवर्ड्स। क्रिश के साथ है रेडियो पब को और भी आगे बढ़ाते हैं।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: रेडियो पॉप का फाइनल आवा में आपका स्वागत है. 5 to 6 ये हमारा अंतिम आवा है और जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच. अभी अगर आपने रेडियो ट्यून इन किया है देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा 6 PM तक. आज इस घंटे पर आपको मैं अनफिल्टर्ड जो पॉडकास्ट है रुजबे और सैंडी के साथ में होकर किन से इन लोगों ने बातें किया है इस पर जानकारी, साथ में ब्रेकफास्ट कैचअप पर क्या बातें हुई है इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम लेकर आएंगे जिसके लिए आपको बस हमारा साथ देना है. साइंटिस्ट ने एटम्स को सडनली बैकवर्ड स्पिन करते हुए पाया है इन क्वांटम एक्सपेरिमेंट, इस पर जानकारी. साथ ही में बॉलीवुड की खबरों की माने तो ये खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा विच इज़ कि इंडस्ट्री में जो टेंशन हो रहा है इस पर मनोज बाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है. पिछले घंटे पर नहीं बता पाए थे शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, लेकिन इस घंटे पर आपके साथ हम ज़रूर ये शेयर करेंगे. वेलकम बैक एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून. रेडियो पब में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
7: Big barrel, big range, bigger deals this King's birthday. Get the hard-rated 10-pack cans range, $26.99. Smirnoff 7% double black soda and guarana or zero 12-pack cans, $29.99. And KGB 18-pack cans, $37.99.
8: Big barrel, your local liquor store.
9: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
10: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
9: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
10: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
9: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
10: 100% authentic and pure as mother's love.
11: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्ड टुगेदर ओकलैंड।

इंडियन स्पोर्ट्स सर्किट की बातें करें, इंडियन खिलाड़ी जो यहां पर आकर न्यूजीलैंड में अपना नाम बना चुके हैं, उसमें से एक नाम अजाज पटेल का आता है। ये एक न्यूजीलैंड क्रिकेटर है जो मुंबई में पैदा हुए थे, लेकिन न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए एज अ चाइल्ड, और ये लेफ्ट आर्म स्पिन बाउलर है हु प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया इन 2018 और लेटर टुक 5 विकेट्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट मैच। 2021 में ही मेड हिस्ट्री जब ये ओनली the third player ever to take all 10 wickets in a single test innings. Or despite this second record-breaking performance against India, New Zealand match haar chuke the, lekin it made him the only bowler to achieve the feat in a losing team. So, Ajaz Patel ko hum salam karte hain, kyunki inhone apna naam cricket ki duniya mein bahut hi roshan kiya hai. Main Krish aapke saath de raha hu. Yaad rahe, Indian Sports Circuit ye aapke liye lekar aate rahenge every Saturday Radio Pub mein. Krish ke saath aage badhte hue, ek aur bahut hi pyara gana aapke naam.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ये खबर आई है और 24 मई को पब्लिश किया गया है कि साइंटिस्ट ने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है एंगुलर मोमेंटम जो मूव हो रहे थे थ्रू अ क्रिस्टल फॉर द फर्स्ट टाइम. और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एटॉमिक रोटेशंस अनएक्सपेक्टेडली रिवर्स डायरेक्शन में होने लगी है वाइल मोमेंटम वॉज बींग ट्रांसफर्ड. और इस इफेक्ट से पावरफुल ये इफेक्ट को ट्रिगर किया गया बाई यूजिंग पावरफुल टेराहर्ट्ज लेजर पल्सेस. और रिसर्चर्स का मानना है कि ये बिहेवियर रिवील करता है प्रीवियसली अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटम मटेरियल्स. और इससे इस डिस्कवरी से आगे चल के फ्यूचर रिसर्च इन्फ्लुएंस हो पाएंगे इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पिनट्रॉनिक्स. क्रिश के साथ है कुछ साइंस रिलेटेड जानकारी भी आपके लिए हम लेकर आते हैं और कुछ ही देर तक और हमारा साथ रहेगा.

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi. King's birthday sale on now with up to 60% off and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Stock up for King's birthday weekend at Liquor Centre with all your favourite RTDs. Hayokitsu, Cruisers, Cody's and more in store now. Liquor Centre, we're big on being local.
5: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.

Yo. Radio Pub. You're listening to Krish. Let's go. रेडियो पब में आज के लिए बस इतना ही. माय लवली लिसनर्स, जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन लिसनर्स, आपको भी याद करते हैं. अगर आपका जन्मदिन है 30th मई, हैप्पी बर्थडे. बहुत सारी बेस्ट विशेज हमारी ओर से आप तक पहुंचे. तो इन्हीं यादों के साथ में अब हमें इजाज़त दीजिए, हम जाते हैं और कल मुलाकात होती है. कल 6 PM टू मिडनाइट मैं लेकर आ जाऊँगा संडे नाइट मेलोडीज आपके लिए. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर सैटरडे नाइट एंड ऑल्सो एन्जॉय योर संडे. कल रात को मिलते हैं. कृष्ण का

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है?
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: What's the occasion? Let us know. Come on into the Bottle-O.
6: Enjoy a Woodstock long weekend. Woodstock 6-packs only $19.99 each. And Woodstock 18-pack range $43.99 each. Thanks to the Bottle-O.
7: Pop into New World North Island for great value every day. Get proper crisps, chips, select sizes $3.99 each. Or Vitasoy UHT unsweetened almond coconut or oat milk 1 litre $2.89 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Big Saves King's Birthday Whiteware Clear Out must end Monday. We're clearing washing machines, dryers, fridges and dishwashers at unbelievable prices. Get a Panasonic 7kg washing machine, only $6.49, or a Robinhood 197-litre fridge, only $5.46. Heaps more deals in store, plus 50 months interest-free store wide. TCs and credit criteria apply. Stock is limited. Must end Monday only at Big Save.
9: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
10: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
11: Kiwi kids are active kids. Creative kids. Sporty kids. Are you a Weet-Bix kid?

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
1: Celebrate the King's birthday with a super hot deal at Liquor Centre. Jim Beam 1.125 litre, only $51.99. Valid 28th May to 1st June. Liquor Centre, we're big on being local.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी, All Together Oakland.
3: Non-stop Bollywood.
4: पूछो के करते शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits. ये है Saturday Bollywood Buzz.
5: प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदो वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: Stretch your budget further this long weekend at Mitre 10. Cozy up your home with 20% off Micothermic heaters. Or tidy up with a Lawnmaster 149cc petrol lawnmower, now $299. T's and C's apply. On now at Mitre 10.
7: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.

0: ये है सैटरडे बॉलीवुड बस।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
3: Announcing Rebel's King's Birthday Sale on now. Get up to 40% off store-wide. That's up to 40% off clothing, footwear and more. Fit for a king, made for champions. There's at least 25% off the entire store on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manuko and Pukekohe. King's Birthday Sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
6: Right now at Guthrie Bowron, take 25% off a wide range of wallpapers. Plus, enjoy a $20 New World voucher for every $150 spent on Dulux or Berger paint. Guthrie Bowron. Inspiration starts here. T's and C's apply.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: Hollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: नहीं आ जाते, नहीं आ जाते, नहीं आ जाते.

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून.
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: Kino could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
6: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: अपना बिन दिन कभी मिस ना करें, बस oakandcouncil.gov.nz पे बिन डेज सर्च करें, अपना एड्रेस एंटर करें और पता लगाएं। अगर छुट्टियों के लिए आपका बिन दिन बदला है तो तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
3: DJ Mix, only on Hot.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
3: DJ Mix, only on Hum.
4: I wanna see you dance.
5: Gokul ki raada chali, o chali, o chali. Gokul ki raada chali, o chali, chali, chali.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 AM.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz। Night Flight.

0: के दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget Gandhi.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: flight on Hum.
1: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
2: Moisture और ventilation का problem लगता है.
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget Gandhi.
3: Night Fly.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials. Night Flight.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane.

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: बिग रेंज, बिगर डील्स, द लार्ज अप्लायंसेस एक्सपो इज ऑन नाउ एट माइटेड एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन। किचन से लेकर लॉन्ड्री तक, फाइंड द ब्रांड्स यू लव एट प्राइसेस यू लव इवन मोर। जल्दी कीजिए, एंड्स जून 1st, ओनली एट माइटेड एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Playing Bollywood's biggest hit.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ अर्जव के साथ एंड एक हफ्ते के बाद आई एम बैक. आई होप यू मिस्ड मी. नो आई एम श्योर यू डिडंट इवन रियलाइज कि मैं नहीं था, नहीं थी. एक्चुअली दैट्स फनी कि आई ब्रिंग दिस अप क्योंकि थर्सडे को मैं सैंडी और रिज़्बे के शो में थी और वहाँ पे जाकर आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन लाइक हाउ डू यू नो कि ये पढ़ा है पढ़ी ही यू नो लाइक द एंडिंग ऑफ अ ग्रामर. क्योंकि आई नो लड़की के लिए चाहिए करती हूँ एंड देन द लड़का जो लाइक करता हूँ. फिर से लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अकबर, मैं अकबर पढ़ा हूँ, किताब पढ़ रही हूँ. एनी वेज या इफ़ यू नो एनी टिप्स ऑन हाउ आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड प्लीज़ 5599 पे भेज दीजिए एंड आई विल ट्राई टू स्टडी. बट नाउ दैट आई हैड अ वन वीक ऑफ मुझे डर लग रहा है कि मैंने हिंदी प्रैक्टिस की थी अभी तक वो लास्ट विंगी शोज में सब मैंने खा के उड़ा दिया है, यू नो. बट या प्लीज़ गिव मी ग्रेस. आई ट्राई टू ब्रिंग बैक माई प्रैक्टिस हिंदी. आई ब्रिंग बैक माई हिंदी दैट आई हैव लर्नड सो फार. बट या आई होप यू हैव एन अमेजिंग मॉर्निंग सो फार. मेरी भी वीक बहुत अच्छी रही. आई गॉट अ लिटल सिक बट ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम फाइन. अभी भी आई माइट बी यू नो हियरिंग अ बिट नीज़ली बट आई एम डेफिनेटली वे बेटर. बट या आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग वीक एंड स्टे सेफ क्योंकि द फ्लू सीजन इज़ डेफिनेटली गोइंग देयर.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. 13th of June सैटरडे को 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने जा रहा है राम कृष्ण मंदिर में 25 ऑनस्लो एवेन्यू इन मनुकाव. और यू नो व्हाट आई जस्ट रियलाइज कि कल से जून है. टुडे इज 31st ऑफ मे और कल से दूसरा मंथ शुरू होने वाला है. एंड आई एम ओ माई गॉड आई एम नॉट रेडी. इतना जल्दी से टाइम पास हो चुका है. इट्स ऑलरेडी जून. वी ऑलरेडी एंटरिंग द सेकेंड. आर वी इन द फाइनल मंथ ऑफ द फर्स्ट हाफ? आई गेस जनवरी मार्च अप्रैल मई जून. या आई गेस या वी स्टिल नॉट येट इन द सेकेंड हाफ बट इट इज़ क्रेजी कि इट्स ऑलरेडी जून. सो ये होने जा रहा है 13th ऑफ जून सैटरडे को. और प्रोग्राम शुरू होगा 7 बजे सुबह से. सो 7 बजे से 8 बजे तक स्थापना पूजा होगा. एंड 8 AM टू 6:30 PM चालीसा पाठ बाय वेरियस मंडालीज फॉलोड बाय हवन एंड आरती शांत पाठ. एंड इफ यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन चालीसा पाठ प्लीज़ कॉन्टैक्ट 021-0299-1219. और ऑफ कोर्स प्रसाद और महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द डे.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Make the most of the long weekend with Redco. Get 40% off Penrite to keep it running smooth for less, and 20 to 25% off coolants, car care, UHF and more. Ends Monday. T's and C's apply. Redco. Get you going.
4: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug-driving.
5: Chill, sip, smile.
6: This is Sunday Breakfast.
7: आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ। और कुछ दिन पहले मुझे बहुत बुरा सा जुकाम हुआ था, इसलिए आई एम श्योर यू कैन नोटिस अ लिटिल बिट, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर, बट इट इज़ बिट नेज़ली देन माय यूजुअल वॉइस, बट इट्स ओके। आई एम सो ग्लैड कि आई एम कमिंग आउट ऑफ इट, बट यू नो आई कैन स्टिल फील कि थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉक नोज है उधर उधर। सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू कि आपका होम की या फिर आपका फेवरेट रेमेडी क्या है जुकाम के लिए, क्योंकि आई थिंक वे इन दिस सीजन ऑब्वियसली वे गेटिंग कोल्डर, विंटर शुरू होने वाला है कल से ऑफिशियली, ऑब्वियसली June 1st, एंड ऑल्सो ये वेदर चेंज के, सीजनल चेंज की वजह से, एंड एवरीवन एट ऑफिस गेटिंग सिक, आपको भी हो सकता है। सो यू नो आई वांटेड टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ लिस्ट सो ऑल ऑफ अस कैन have that, you know, knowledge ki kya kare during zukham, which like whatever is the best one out there, so we can have that ready jab bhi aap sick ho. Kyunki to be honest, if you're lucky you might already have learned it, or aapke paas aapki parents hai ya fir nani who can always look after you, but for someone like me jiski parents ya fir grandparents yahan nahi hai ya fir even any guardians, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर्स के साथ रहती हूँ एंड आई लव देम, बट ऑल्सो लाइक एज एन एल्डर सिस्टर आई ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर देम एंड आई थिंक आई शुड नो देम एज वेल। सो आपके साथ आई वुड लव टू मेक दिस लिस्ट सो वी कैन ऑल शेयर एंड बी प्रिपेयर्ड जब ये हमें यू नो हमें ये फ्लू होता है। मैसेज 2599 पर आपका बेस्ट रेमेडी क्या है जब आपको जुकाम होती है। फॉर मी आई लव माई विक्स की वो रब, मुझे बहुत अच्छी सी नींद आती है उसकी वजह से। आई ऑलवेज हैव टू रब इट ऑन माई चेस्ट एंड माई नोज एंड माई हेड एंड देन लेट्स गो थ्रू सम लिस्ट एंड वी विल या लेट्स मेक वन लिस्ट टुगेदर। 5599 पे प्लीज सेंड कीजिए आपका रेमेडी सॉल्यूशन।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. जब भी एक बॉलीवुड की रीमेक बन जाती है देन यू नो कॉन्ट्रोवर्सी भी फ्री में साथ साथ में आ जाती है. एंड दिस हैज़ एग्जैक्टली हैपन टू अ न्यू सॉन्ग फ्रॉम वरुण धवन की अगले मूवी. आई विल लेट यू नो मोर अबाउट इट आफ्टर 7 o'clock.

0: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
3: People of New Zealand, Briscoe's $60 million King's Birthday Sale is on. With $60 million of stock reduced across all Manchester, electrical and the entire store. Shop Briscoe's $60 million King's Birthday Sale on now. See online for T's and C's.
4: Right now at Guthrie Bowron. Take 25% off a wide range of wallpapers. Plus, enjoy a $20 New World voucher for every $150 spent on Dulux or Berger paint. Guthrie Bowron. Inspiration starts here. T's and C's apply.
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है भूत बंगला, जो थिएटर्स में था या फिर हो सकता है अभी तक भी है, यू नो लाइक, बट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शोज. ये मूवी डोंट वरी, आपको यू नो लाइक मूवीज में जाके नहीं देखना था, देन डोंट वरी, क्योंकि ये जल्द ही नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाला है. एट दिस पॉइंट इट्स बीन सेड कि जून 12th में रिलीज होगा, सो लिटरली 12 दिन में. सो या, सो इफ यू समवन हु जस्ट एंजॉयज वॉचिंग घर में ही, देन लकी फॉर यू, क्योंकि ये मूवी बहुत जल्द आपकी फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आने वाला है.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: They call me

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. आज 31st में ऑफिशियली न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ की आखिरी दिन है. बट वन थिंग आई वांट टू से इज़ कि हाँ, मई न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ है, बट कीप सपोर्टिंग हमारी लोकल म्यूजिक आर्टिस्ट, या कीप बैकिंग योर बैकयार्ड बीट्स, क्योंकि इन लोगों को हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड इट्स नॉट लाइक वी जस्ट सपोर्टिंग भी, बट एक्चुअली में इन लोगों की गाने भी बहुत अच्छे हैं. एंड आई फील लाइक इफ़ वी ऑल लिसन टू इट, इफ़ वी ऑल यू नो टॉक अबाउट इट, देन दे कैन यू नो लाइक और लोग भी सुन सकते हैं इन लोगों की टैलेंटेड म्यूजिक को. एंड आई फील लाइक न्यूजीलैंड बहुत छोटी कंट्री है, सो मे बी इट माइट जस्ट यू नो बी इन आर फोर वॉल्स कंट्री की. बट इफ़ आप ये गाने शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, मे बी यू नो फीजी में, या फिर इंडिया में, या फिर एनी अदर कंट्री, UK, यू नो US, ऑस्ट्रेलिया, देन दीज गाइज विल इवन गेट ब्रॉडर ऑडियंस. सो यस, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए. एंड ऑब्वियसली वी विल बी प्लेइंग ट्रैक्स फ्रॉम लोकल आर्टिस्ट थ्रू आउट ऑन हम. मेक श्योर कि आप उन ये गानों को वोट कीजिए. टेक्स्ट 5599 पे विथ कीवर्ड MM एंड द आर्टिस्ट विद द मोस्ट इंटरेक्शन टॉप 3 में जो भी है, दे विल बी फीचर्ड ऑन हमारी ऐप, रोवा की ऐप में. एंड विल ऑल्सो बी विनिंग सम अमेजिंग हैम्पर्स, एंड आई फील लाइक दे डिजर्व इट. ऑल्दो एवरी वन इज सो टैलेंटेड, दिस दे कैन ओनली बी 3 विनर्स, यू नो, एज क्लिशे एज इट मे साउंड. सो या, please support Hamari local artists. Coming up next, I will be, sharing you another local artist that recently came to Hum.

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. और इस मंथ में है न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ, एंड ऑब्वियसली टू सेलिब्रेट न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ हमने, यू नो, वी हैड बैक योर बैक एट बीच, जहाँ पे हमने हमारी लोकल आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पे अपने गाने लेकर और बात करके दे शेयर्ड देयर अमेजिंग टैलेंट. थर्सडे को वी हैड अनदर अमेजिंग टैलेंट जिसका नाम है भास्कर, एंड ही इज़ बॉर्न इन दार्जिलिंग इंडिया, ब्यूटिफुल प्लेस, शाउट आउट दार्जिलिंग, वो एरिया में आई ऑल्सो स्टडीड बाय द वे. एंड उनकी नेपाली ओरिजिन है एंड नेपाली एथनिसिटी, but he, you know, born and raised in India, and uske baad he came to New Zealand 10 years ago, and he has been creating music, you know, since he can remember, and music has always been a part of his journey. And ye gana jo unhone likha hai Aasman, it is you know, a beautiful song jahan pe unhone apni journey across different cultures and experience ke saath, you know, navigating new life, no, like taking this inspiration, he's made this amazing song. So playing up next is Aasman by Bhaskar Pradhan. Shout out to my friend as well, and he, honestly, if you love his music, 5599 pe zarur message kijiye with the keyword MM, and yeah, vote for him if you think his song is amazing.

कैसा लगा आपको ये गाना? आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ अर्जव के साथ. मेक श्योर आप मैसेज कीजिए 5599 में विद MM एज अ कीवर्ड टू वोट फॉर हिज सॉन्ग एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू मोर ऑफ आर लोकल आर्टिस्ट सिंस टुडे इज द लास्ट ईयर न्यूज़ इन म्यूजिक मंथ. सो या नेक्स्ट आवर में हम आपके लिए दूसरा आर्टिस्ट के गाने इंट्रोड्यूस करूँगी इफ़ यू मिस्ड आउट ओवर द वीक. But yeah, stay tuned.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. अ वेरी बिग कॉन्ग्रेट्स टू दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को, क्योंकि उन्होंने दे क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू सेल आउट टू कॉन्सिक्यूटिव नाइट्स एट द आइकॉनिक वेन्यू जो कि है मैडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क. 22,000 की कैपेसिटी है और दोनों ही दिन completely sold out for their aura tour. And you know, I'm not surprised, kyunki jo bhi inke concert mein jaate hain, they come out with they're so itne energy ke saath, and like, everyone says ki it was the best concert ever. And jo bhi nahi gaye hain, like for example hamari office mein jo bhi nahi gaya tha for the concert, everyone had FOMO jo ki hai fear of missing out, jalan hua tha sabke liye. So if you are one of those people jinne Diljit ki concert recently attend kiya tha, you can flex, aap show off kar sakte ho ki aapne wo ek bahut acha sa concert aapne attend kiya hai.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजब के साथ. जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारी रोवा की ऐप में ROVA या फिर आप वेबसाइट में भी जा सकते हो rova.rova.nz जहाँ पे आप हमारी म्यूजिक सेशंस को सुन सकते हो. सो वी हैव डिफरेंट प्लेलिस्ट स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम हम रिवाइंड जिसमें बॉलीवुड की गोल्डन एरा की गानी है 60s एंड 70s के. एंड फन फैक्ट कि ये स्टेशन ये आई मीन ये प्लेलिस्ट रोवा की ऐप में नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है एंड वी ऑल नो व्हाई क्योंकि ऑब्वियसली हमारी गोल्डन एरा. और दूसरा प्लेलिस्ट का नाम है हम 80s जुकबॉक्स जो है बॉलीवुड की 80s की गाने एंड या जस्ट एंजॉय योर यू नो नॉन स्टॉप 80s के गाने. एंड गेस व्हाट फन फैक्ट ये भी रोवा की नंबर टू म्यूजिक स्टेशन है. सो आई लव कि हमारी बॉलीवुड सॉन्ग्स ने रोवा में डोमिनेट किया है. एंड उसके बाद वी हैव फीजी की भजन्स ये वर्ल्ड की फर्स्ट एवर 24/7 फ्री फीजी भजन है. सो आप कहीं में भी यू नो आप भजन सुन सकते हो. एंड देन वी ऑल्सो हैव चरती कला पंजाबी हिट्स जिसमें आप पंजाबी हिट्स बैक टू बैक सुन सकते हो. एंड या वी ऑल्सो हैव एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेलिस्ट इसका नाम है राहत फ़तेह अली खान प्लेलिस्ट जो कि है ऑब्वियसली बैक टू बैक सूफी कवाली अमेजिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द वन एंड ओनली राहत फ़तेह अली खान.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
2: Whoa!
3: Whoa!
2: Whoa!
3: Whoa!
1: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
2: whoa
1: into a
4: whoa.
1: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search Quake Safe Your Place to learn more.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Autumn's arrived, but the house needs work. Heat pump to clean, gutters are full, that laundry tap still drips. Don't worry, AA Home can help with tasks at your place. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
9: Waitoa free range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels, for all the meals.

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू के साथ एंड 9 बजे के बाद आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट न्यू बॉलीवुड मूवीज विल बी रिलीजिंग इन न्यूजीलैंड थिएटर्स.

0: meter.
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. और कुछ दिन पहले बहुत हेडलाइंस निकला हुआ था कि करण जौहर ने क्यों अनफॉलो किया था आलिया भट्ट को. करण जौहर ब्ला ब्ला ब्ला, करण जौहर ने बॉलीवुड एक्टर्स को क्यों अनफॉलो किया था, व्हाई व्हाई दिस दिस दिस. एंड बहुत सारी लाइक सोशल यू नो एवरीवन वाज लाइक अरे ये ड्रामा क्या हो रहा है, why why the unfollow, because you know like usually people unfollow because now they're not talking to each other anymore, this and that. And Karan Johar has finally spoken about why he unfollowed some actors, and I'll tell you next.

0: breakfast.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या मतलब, क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The breakfast show with Vijay and Pooja,
0: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Big range, bigger deals. The large appliances expo is on now at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Kitchen se lekar laundry tak. Find the brands you love at prices you love even more. Jaldi kijiye, ends June 1st. Only at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
5: Get fresh deals from the fresh food people this week at New World North Island. Like Vivaldi Gold Wash Potatoes 2 kg, $5.49 each. Or pork mince, $14.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ाव के साथ. एंड इफ यू मिस्ड आउट और वुड लव टू लिसन टू विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो अगेन, देन टेक्स्ट थ्रू BF टू 55 or 99 एंड कैच अप ऑन देयर पॉडकास्ट, बिकॉज़ आई विल सेंड यू द लिंक. एंड वी विल बी बैक ऑन, नॉट वी सॉरी, दे विल बी बैक, विजय और पूजा विल बी बैक ऑन हम ऑन ट्यूजडे 6 AM.

0: जो फील हो टिकल योर टेस्ट बड्स.
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ुव के साथ. एंड इफ़ यू नेवर ट्राइड कुकालिंस की खाना देन ओ माय गॉड आई थिंक दिस इज़ योर साइन टू हेड ओवर टू 125 बादेर ड्राइव BADER. मुझे प्रोनाउंस करनी नहीं आती है बट 125 BADER स्पेस ड्राइव मांगेरे ऑकलैंड. और ओ माय गॉड दिस इज़ द बेस्ट कुकालिन फूड आई हैड इन न्यूजीलैंड. बहुत बहुत बहुत यम्मी है उनकी माइनस इस विच इज़ लाइक पटेटो सैलेड कुकालिन वर्जन. उनकी लाइक सॉसेज मीट स्टेक कोल्सो दे डू लाइक अ बारबेक्यू प्लेट जहाँ पे यू गेट बिट्स ऑफ एवरीथिंग. एंड ओ माय गॉड वन थिंग आई सी इज़ कि उनकी सर्विस एंड द पोर्शन साइज इज सो गुड. लाइक बहुत दिल से देते हैं लाइक इतना सारा खाना लाइक ओ माई गॉड. एंड ऑल्सो दे ऑल्सो हैव मशरूम बिकॉज कुकालिन के खाना में मशरूम सॉस के बगैर इट्स इनकम्प्लीट. सो मशरूम सॉस इज ऑल्सो अनरियल. एंड उनकी कुकालिन डोनट्स जो है इतना बड़ा है एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग क्योंकि जिन्होंने ये रेस्टोरेंट खुला है ये यहाँ की एक यू नो द ओनर उनकी सपनों में ये रेसिपी आया था एंड दे एक्चुअली मीट दिस डोनट्स थ्रू दैट एंड देन वाओ व्हाट अ स्टोरी. एंड उनकी इतना यमी डोनट्स है एंड दे ऑल्सो हैव डेजर्ट्स एंड स्टफ लाइक पम्पकिन पोके बनाना पोके वेरी कुकालिन स्टाइल. एंड ऑल्सो यू वुड लव उनकी स्टीक ऑन मशरूम ऑन राइस. ओफ खाना सोच के ही मुझे पानी आ चुका है मुख में बट you have to try it out. It's called Kai Kai Time. Sorry, I actually just told you the address. मैंने रेस्टोरेंट की नाम ही नहीं बोला था. So Kai Kai Time, KAI Time. And it is in Mangere, 125 Bader Drive in Auckland. And honestly, पैसा वसूल खाना. Very yummy. आपको कोई plans नहीं है आज या फिर if you're thinking of going somewhere and you want to try out some new cuisine, I would definitely tell you to go try that out. Highly recommend. Aaj ya fir kal, kyunki kal bhi chutti hai for some of us. Yay! So yeah, highly recommend. Bahut tasty hai.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू के साथ. एंड 13 साल हो चुका है सिंस अयन मुखर्जी ब्लेस्ड अस विथ ये जवानी है दीवानी, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स एवर. क्योंकि ऑनेस्टली ये फिल्म इतना अच्छे से बनाया है कि आई कैन वॉच इट इवन इन 2026. माई सिस्टर हु इज़ अ मैसिव फैन ऑफ द सॉन्ग अ मूवी सॉरी वॉच इज एवरी ईयर रिलीजियसली. बहुत अच्छा फिल्म है ये एंड इवन द सॉन्ग्स आर अमेजिंग. एंड आई आस्क्ड यू अर्लियर कि आपको कौन सी गाना सुनना है टू सेलिब्रेट यू नो द 13 ईयर्स. आई वुड लव टू प्ले वन ऑफ द सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी एंड ऑब्वियसली द सॉन्ग्स वर बदतमीज दिल, बलम पिचकारी, इलाही, कबीरा. एंड इट वॉज वेरी क्लोज बट वी हैव कबीरा विनिंग विद 2 वोट्स एक्स्ट्रा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, please enjoy Kabira.